जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मह मिलत देह तर सब हूँ।

का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मोख दुआ जती सदा वह जुगत ना जाने छड़ बए घर बार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोड़िया जापे मंगला पहला।

सुखदाता गुण मह गुणी सुमाया ऐसा जग मह मोह है पसारा मन मुख अज्ञानी अंध अंधारा धंधे धावत आओ जन्म गवायाओ बिनावै दुख पायाओ कर्म होवै तां सतगुर पाए।

कमावै। सुख ना कब हूँ पाया, बहुते पे करे भेख तारी। बिन सबदे होमै किने ना मारी, जीवत मरै ता मुकत पाए। सचे नाए सो माया, अज्ञान तृष्णा ए सौ तन है जलाए। तिस दी बूजै जे गुर शब्द कमाए, तन मन शीतल क्रोध निवारै। होमे मार समाया।

पछाण हो। भिक्षे कमलाव किरण परंगासाए प्रगट कर देखाया। आपे करता सचा सोई आपे मार जीवाले अवर न कोई। नानक नाम मिले वडियाई आप गवाए सुख पाया। मारु सोहला महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सचा आप सवार नहारा अवर न सूजस बीजी कारा। गुरमुख सच वसा घाट अंतरा सहजे सच समाई है। सबना सच वसा मन माही गुर प्रसादी सहज समाही। गुर गुर करता सदा सुख पाया गुर चरनी चेत लाई है। सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा सतगुर सेवी अवर ना दूजा।

अंतरजामी हो मांगो दान तुझ प्रकृते हर अनदन नाम वखाणी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का

एक वस्त को पहुँच न साके। तन रति पूक प्यासाए तन कर बिनो दो कर जोरै। प्रयाव प्रदेश न जाओ वसो कर मोरे। ऐसा बन जाओ करो गृह पीतर जित उतरे पूक प्यासाए। सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा। पई कृपा नानक सत संगे तौ तन पिर आनंद उलासाए। तन अंधी पेराव चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना। जिस वखर कौ तुम आए हो सो पायो सतगुरु पासाए। तन कहे तुम वस मै नल प्रया सुखवासी बाल गोपाल। तुझे बिना हो कित ही ना लेके वचन दे छोड़ ना जासाए। फिर कहा हो हुक्मी बंदा हो भारो ठाकुर जिस कान ना छंदा। जिच राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सिधासा है।

जति सति सुख वासी एक दतार सगल है जाचक देह दान सृष्टि जाहे करह भगत अरंग अपारा खिन में थाप उथा पणहारा भारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मान आओ भगती जाहे जिस देह दरसा सोई तुद जाने ओह गुर के शब्द सदा रंग माने चतर स्वरूप सियाणा सोई जो मन तेरे पावी जाहे जिस चीत आवै सोवे प्रवाह जिस चीत आवै सो सचा सहा जिस चीत आवै तिस पाओ कहा अवर कहाउ किस की जाहे तृष्णा बूजी अंतर ठंडा गुरपुरे लै तूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी अम्यों झोल चुल पी जाहे मरे नाही साध साध ही जीवे अमर प्या अबनासी थी वै

सब लोवा सब काले वस आप प्रभु किया निहचल एक आप अविनाशी सो निहचल जो तिसे ध्याएंदा हरका सेवक सो हर जेहाओ भेद ना जानो मानस देहा ज्यों जल तरंग उठ।

देहो दरस जित मन तृपतासा हर कीर्तन मानव ठहराएंदा रूड़ो ठाकुर आओ किता वस न आवै हर सो किस करे जे हर क्या संता पहवै कीता लोड़न सोई कारायन दरफे न कोई पाएंदा जिथे आओ घट आए बनत है प्राणी तिथे हर त्याये सारंग पाणी जिथे पुत्र आओ कलत्र न बेली कोई तिथे हर आप छडाएंदा वड्डा साहब अगम्य था क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह काट सिलक जैसा

अथा स्वामी अतुल ना जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर ना कोई बिया। आद मद अंत प्रभ तू ए सगल पसारा तुम तना जमदूत तिस निकट न आवै।

सिल पूजस बगुल समाधं मुख झूठ विपूखन सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गाल माला तिलक ले लाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै नेह फलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसारस्य गुरप्रसादित रह के

काच कोटंग रचांत तोयंग लेपनंग रक्त चर्मण है नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग स्तंभन है गोविंद नामंग नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्थिरंग दुर्लभ देह उदरंत साध सरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुबंत तोयंग अच्युत गुणज्ञंग पूर्णंग बहलो कृपाला गंभीरंग ऊंचाय सर्वज्ञ पारा प्रत्या प्रयंग विश्राम चरणंग नाथ नाथे नानक शरणंग मृगी पेखांत बद्धेक प्रहारेण लख आवद है अहो जस्य रखेण गोपाल है नानक रोम न छेद्यते बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिश है बिखम थान बसंत उच्च है नह सिमरंत मरण कदांच है होवंत आज्ञा भगवान पुरख है नानक कीटी सास करखते शब्दंग रतंग हितंग मया कीर्तंग कली कर्म कृत्वा मिटंत तत्रागत परम मोहंग भगवान रमणंग सर्वत्र थान्यंग दृष्ट तोयंग अमोघ दर्शनंग बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियंग जाप जपना कटांत रूपं कटांत दीपं कटांत राव सस्यर नक्षत्र गगनं कटांत वसुदा गिरतर शिखंडं कटांत ललना सोत प्रातहितं कटांत कनिक मानिक।

परम पुरुष होतमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरंग पारण पोखण करंत जिया बिसराम छादन देवंत दानं।

अनित्य रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्ध्यं मारत लोकः नानक चिरंकार दुख भोगते।

गोविंद रमणंग साध संगम है। सुमंत्र साध बचना कोट दुख बिनासन है। हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण है। सुंदर मंदर सैन है जीन मध्य हर कीर्तन है। मुक्ते रमण गोविंद है नानक लभद्यं बड़ भागण है। हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो। जाखा जाका असल तोला मितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अब जसंग मिटंत।

कबीर ने गुसाए बह गए थांगी नाही कोए, दीन गरीबी अपनी करते हुए सो होए। कबीर बैसरों की कुकर भले साकत की बुरी माए, ओह नित सुनहर नाम जास ओह पाप साहन जाए।

चाकू का। कबीर सती पुकारा कह चढ़े सुन हो वीर मसान। लोग सबाया चल गयो हम तुम कावन निदान निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दहद सजाए। जो जैसी संगत मिले सोता सो फल खाए।

आए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, तहा कबीर मटकिया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पे